0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

सुझा रहा था और वो कुरान के खिलाफ जो है वो बातें बना रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के पैगाम को इंसानों के सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया और सहाबा कराम ने उसको माना और अमल करके दिखाया, तो इस्लाम ने ताकत पकड़ी और शैतान के सुझाए हुए वो रास्ते जो गलत रास्तों पे जिन लोगों को लेकर जाना चाहता था वही बिल आखिर मगलूब हो गए और उनकी नस्लें इस्लाम ले आईं। और इस्लाम के बारे में जितनी भी शकूक व शुबहात और एतराजात शैतान के तरीके पर चलने वाले लोगों ने किए उनकी चालें उलट पड़ गईं और इस्लाम फैल कर रहा। आज भी इस्लाम के खिलाफ जो नादान लोग जहालत में पढ़कर जो गलत किस्म के एतराजात करते हैं और लोगों को राह अक्सर हटाने की कोशिश करते हैं, तो अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि कुरान को खुद समझें भी और कुरान के पैगाम को बेहतरीन तौर पर पेश करें। तो ये बातिल के नज़रियात और फ़लसफे इसके मुकाबले में नहीं चल सकते और लोग जान जाते हैं कि कौन बहरूपी हैं, कौन गलतकार हैं, कौन झूठ बोलने वाले हैं, कौन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इस्लाम तो वो नूर है जो फैल कर रहेगा और इस्लाम जो है वो अमन सलामती का दीन है। तो अल्लाह ताला की आयात पुख्ता हैं, मोहकम हैं, इन पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला इल्म वाला है और हिकमत वाला है, वो जानता है कि शैतान ने कहाँ कहाँ खल अंदाजी की और उसके क्या असरात हुए, और उसकी हर हिकमत, अल्लाह की हर हिकमत हर शैतानी फितने का तोड़ पैदा कर देती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो खुद आप मौजूद थे, तो अल्लाह का अहकाम सुना रहे थे और अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे थे, लेकिन सहाबा कराम कितने खुश नसीब थे जिन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना, उसको याद किया और उस पर फिर अमल किया। और ये कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने हमेशा के लिए लिया है। अब अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि इस कुरान के पैगाम को इंसानियत के सामने आम करें, समझाएं और बताएं। और जो भी कुरान और हदीस पर नादान लोग गलत किस्म के एतराजात करके इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, हर जमाने में अहले हक ने उनका मुकाबला किया है, हर जमाने में अहले ईमान ने उनका जवाब दिया है, और अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद कुरान और सुन्नत का जरूरी इल्म भी हासिल करें, दीन के पैगाम को समझें भी, और जितने भी अल्लाह के बाकी लोग इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिकमत के साथ काम करें, ताकि वो दुनिया के इंसान पहचान जाएं कि उनके अंदर कोई दलील नहीं है और जिन लोगों ने हक को छुटाया है और प्रोपेगेंडा किया है। दलील अगर है, रोशनी अगर है, हकीकत अगर है, हक अगर है, तो वो दीन हक ही है, अल्लाह का पैगाम ही है। ये शैतान को जो मोहलत मिली है इंसानों को गुमराह करने के लिए, रास्ते गलत रास्ते सुझाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को जो शैतान के तरीके पे चलना चाहते हैं उनके ये बात फितना बन जाती है। और तो जो जिनके दिलों में रोग लगा हुआ है यानी मुनाफकत का या शिर्क व कुफ्र का, तो वो शैतान की डाली हुई खराबी उनके लिए फितना बन जाती है जिनके दिलों में खोट है, रोग है और खोट है, क्योंकि वो हक की दुश्मनी में बहुत आगे निकल जाते हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती कि वो क्या इस्लाम के खिलाफ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। जब आदमी जहालत पर उतर आए, जब तस्सुब पे आ जाए, तो वो फिर गैर माकूल बातें करता है जिनके अंदर कोई माकूलियत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ईमान लाने वाले जो हैं वो जान जाते हैं कि यह हक के खिलाफ जो गुबार निकाला जा रहा है, हक के खिलाफ जो तअस्सुब बरता जा रहा है, हक के खिलाफ जो दुश्मनी की जा रही है, तो ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। तो ईमान लाने वालों के ईमान और पुख्ता होते हैं, उनके दिल अल्लाह के आगे झुक जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर कायम रखता है ईमान लाने वालों को। इसलिए ये बात भी याद रखिए कि जब भी इस्लाम के खिलाफ पुरजोर प्रोपेगेंडा किया गया, इस्लाम उतनी शिद्दत के साथ फैला। इसलिए कहा जाता है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। तो शैतानी ताकतें इसको जितना भी दबाने की कोशिश करेंगी ये फैल कर रहेगा, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का दीन है, इस्लाम रहमत का दीन है, इस्लाम बरकत का दीन है, इस्लाम अदल का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है, इस्लाम एहसान का दीन है, और इस्लाम दुनिया और आखरत की नेमतें देने के लिए आया है। وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ। انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شکی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر
قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے۔

इसका मतलब हरगिज नहीं कि उनके दर्जे को घटाया गया, सिर्फ ये है कि मामलात की अहमियत को वाजे किया गया, हुकूकुल इबाद की अजमत को वाजे किया गया। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इबादात तो अल्लाह के लिए है, हाल यह है कि नमाज दिन में 5 बार, हज जिंदगी में 1 बार, जक़ात साल में 1 बार, रोजा साल में 1 बार, 1 महीना, लेकिन मामलात ऐसी चीजें हैं कि लम्हा बलम्हा आदमी को दरपेश आते हैं। और आप देखें कि हमारे बड़े बड़े जो मदारस हैं उनमें फिक की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं, हिदाया फिक की एक बड़ी किताब है, फिक हनफी की, उसकी 4 बड़ी बड़ी जिल्दें, 1 जिल्द सिर्फ इबादात से मुतालिक, बाकी 3 जिल्दें मामलात पर है। यानी पहली जिल्द के अंदर उसमें इबादात का जिक्र किया गया, बाकी सारा जो उसके अंदर है 3/4 समझ लें वो मामलात के मुतालिक बात हुई है कि मुख्तलिफ किस्म की डीलिंग जो है वो कैसे हो। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मामलात की अहमियत को बयान किया, मिश्कात शरीफ की एक हदीस है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने से रवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दवावीन सलासा कि जो आमाल नामे हैं वो 3 किस्म के हैं, दीवानुन ला यग़फिरुल्लाह, पहला किस्म का आमाल नामा वो है जिसको अल्लाह ताला किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, और वो क्या है, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क के जुर्म को माफ नहीं करेंगे, इसके अलावा जितने चाहें अगर कोई अल्लाह पाक किसी के गुनाहों को माफ फरमा दे। उसके बाद फरमाया कि जो दूसरी किस्म आमाल नामे की है वह दीवानुन ला यतूबुल्लाह, एक ऐसा आमाल नामा जिसे अल्लाह पाक किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत में माफी नहीं होगी, वो ये है कि जुल्मुल इबाद फी मा बैनहुम, इंसानों का आपस में एक दूसरे पर जुल्म करना, वो जुल्म अल्लाह माफ नहीं करेगा। खत्ता यक्तसबादुहुम मिन बाद, जब तक कि बंदा अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला ना ले ले अल्लाह नहीं माफ करेगा। यानी या तो वो बंदा माफ कर दे या फिर वो बदला ले ले। अल्लाह तबारक व ताला बंदों के मामलात के अंदर फरमाते हैं कि जब तक बंदा नहीं माफ करेगा मैं भी माफ नहीं करूंगा। तीसरे किस्म का आमाल नामा जो मिश्कात शरीफ के हदीस में जिक्र हुआ, हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वदीवान यअबाउल्लाहु बिही, एक ऐसा आमाल नामा जिसकी अल्लाह परवाह नहीं फरमाता, और वो है जुल्मुल इबाद फीमा बैनहुम व बैन अल्लाह, जो इंसानों ने इबादात में कोताही की हो, फज़ालिका अल्लाह, तो ये मामला अल्लाह के हवाले होगा, इंशा अज़बहू व इंशा तजावज़ानो, चाहे तो वो उन इबादात को छोड़ने पर अजाब दे, चाहे तो अल्लाह तबारक व ताला माफ करे। तो इस तरह ये तीसरी किस्म जो बयान की गई कि इबादात में अगर कोताही करता है तो ये भी जुर्म है, लेकिन ये मामला अल्लाह तक है, अल्लाह ताला जैसा भी मामला फरमाए, लेकिन इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि इबादात को हल्का या कमज़ोर समझा जाए, बल्कि इबादात के मामले के अंदर जितना इंसान बेहतर तरीके से मुआज़बत और पाबंदी के साथ अमल करने वाला होता है इतना ही अल्लाह ताला उसके मामलात को भी बेहतर फरमाता है। इबादात के जरिए दिल नरम होते हैं, तज़किया नफ्स होता है, इंसान की तत्हीरे बातन होती है, और जितना जितना इंसान के अंदर वो तत्हीरे बातन होती चली जाती है इतना ही वो बंदा जो है वो बंदों के मामले के अंदर भी जुल्म करने से बचता है, ज्यादती करने से बचता है।

0: Move for 10 आ गया है, This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।